0: रेडियो एनआरएन 99.1
1: क्लासिक टेक को वाईफाई 6 राउटर नाम एक घाम अनेक शक्तिशाली 4 एंटीना में वाइड कवरेज 5G स्ट्रेंथ लो लेटेंसी र फास्ट स्पीड सब अस्त्र को शक्ति बोके 200 Mbps को इंटरनेट अब 3 महीना का लागी मात्र 3300 रुपया में साथ में IPTV मात्र 250 प्रति महीना बुकिंग को लागी 9801004477 शर्तहरू लागू हुनेछन् क्लासिक टेक छोयो कि चलियो